0: City FM 89.
1: It's 7:30 a.m.
2: City FM 89.
3: This show is brought to you by Jazz.
4: We're playing your song.
5: This show is brought to you by.
6: फौरन अपने डॉक्टर से शिंगल्स के बारे में बात करें. खतरे में घिरे हर फर्द को जरूरी नहीं शिंगल्स हो. ये पब्लिक सर्विस मैसेज जीएस के पाकिस्तान की जानिब से है. मजीद मालूमात के लिए अपने डॉक्टर से रुजू करें.
2: City FM 89.
7: सब मुड़-मुड़ के देख रहे हैं.
8: Of course, it's the all new Hyundai Palisade Hybrid. Grand, bold and hard to miss.
7: बाहर से तो ग्रैंड है, अंदर भी प्रीमियम फील आ रही है और स्पेस भी काफी है.
8: Exactly. Palisade Calligraphy is a true 7-seater with 3 usable rows, captain seats and a dual pane sunroof for a premium experience.
7: अच्छी है पर मुझे तो 8-seater चाहिए थी.
8: जी बेगम साहिबा, आपके लिए Palisade Smart ऑर्डर कर देता हूँ. इसमें 8 सीट्स का ऑप्शन है.
7: यानी फैमिली के लिए भी परफेक्ट और नो कॉम्प्रोमाइज ऑन लुक्स. अब समझ आया सब क्यों देख रहे थे.
8: एक्सपीरियंस द ऑल न्यू Hyundai Palisade हाइब्रिड एट योर नियरेस्ट Hyundai डीलरशिप. प्रीमियम हैज इट्स शेप.
0: डोंट एडजस्ट योर डायल.
2: दिस इज
1: City FM 89.
0: You're listening to The Breakfast Show with Charmaine.
9: Yeah. Ice.

0: perfect antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: This show is brought to you by Jazz.
3: City FM 89.
2: This show is brought to you by.
4: फौरन अपने डॉक्टर से शिंगल्स के बारे में बात करें. खतरे में घिरे हर फर्द को जरूरी नहीं शिंगल्स हो. ये पब्लिक सर्विस मैसेज जीएसके पाकिस्तान की जानिब से है. मजीद मालूमात के लिए अपने डॉक्टर से रुजू करें.
5: City FM 89.
6: चिकन पॉक्स याद है? ये शिंगल्स बन के वापस आ सकता है. कभी सोचा भी नहीं था. तकरीबन हर शख्स के जिस्म में शिंगल्स वायरस छुपा होता है, तो शिंगल्स को अंडर एस्टिमेट ना करें.
4: फौरन अपने डॉक्टर से शिंगल्स के बारे में बात करें. खतरे में घिरे हर फर्द को जरूरी नहीं शिंगल्स हो. ये पब्लिक सर्विस मैसेज जीएसके पाकिस्तान की जानिब से है. मजीद मालूमात के लिए अपने डॉक्टर से रुजू करें.
7: फोन अपग्रेड करने का सोच रहे हो तो सुनो, फोन हो तो 5G वाला. मिलेगा कैसे? बस जैज एक्सपीरियंस सेंटर या जैज ई स्टोर पर जाओ और नया 5G वाला फोन अपना बनाओ. यही नहीं, फुल पेमेंट पर पाओ साथ में फ्री डेटा बंडल्स, हैंडसेट इंश्योरेंस और बहुत कुछ. तो फिर फोन हो तो 5G वाला. जैज 5G.
8: सब मुड़ मुड़ के देख रहे हैं.
9: Of course, it's the all-new Hyundai Palisade Hybrid. Grand, bold and hard to miss.
8: बाहर से तो grand है, अंदर भी premium feel आ रही है. और space भी काफी है.
9: Exactly. Palisade Calligraphy is a true 7-seater with 3 usable rows, captain seats and a dual-pane sunroof for a premium experience.
8: अच्छी है, पर मुझे तो 8-seater चाहिए थी.
9: जी बेगम साहिबा, आपके लिए Palisade Smart order कर देता हूँ. इसमें 8 seats का option है.
8: यानी फैमिली के लिए भी परफेक्ट और नो कॉम्प्रोमाइज ऑन लुक्स. अब समझ आया सब क्यों देख रहे थे.
9: एक्सपीरियंस द ऑल न्यू Hyundai Palisade हाइब्रिड एट योर नियरेस्ट Hyundai डीलरशिप. प्रीमियम हैज इट्स शेप.
10: इमरजेंसी कभी बताकर नहीं आती.
11: चंद इमरजेंसी रेस्क्यू सर्विस में आपकी क्या मदद कर सकती हूँ?
12: कंट्रोल फॉर M210210 मूव करेंगे.
10: सिंध इमरजेंसी रेस्क्यू सर्विस 1122 हुकूमत सिंध के महकमा बहालियात का एक अहम इदारा है जो जदीद निज़ाम के जरिए फौरी और मौसर मदद फराहम कर रहा है. हुकूमत सिंध के इस इनिशिएटिव से इमरजेंसी सर्विसेज में एक नया मयार कायम हुआ है. ये सिस्टम नतीजा है अवामी खिदमत के उस जज्बे का जो हुकूमत सिंध की पहचान है. सिंध इमरजेंसी रेस्क्यू 1122. आपकी हिफाजत हमारी जिम्मेदारी. खिदमत में सबसे आगे सिंध.
5: यू आर लिसनिंग टू सिटी एफएम 89.
13: वी आर प्लेइंग योर सॉन्ग.
14: यू आर लिसनिंग टू द ब्रेकफास्ट शो विद शर्मीन.

0: TFM 89. It's 8:30 a.m.
1: City FM 89.
2: This show is brought to you by Jazz.
0: City FM 89.
2: This show is brought to you by.
3: फौरन अपने डॉक्टर से शिंगल्स के बारे में बात करें. खतरे में घिरे हर फर्द को जरूरी नहीं शिंगल्स हो. ये पब्लिक सर्विस मैसेज GSK पाकिस्तान की जानिब से है. मज़ीद मालूमात के लिए अपने डॉक्टर से रुजू करें.
4: We're playing your song.
5: फोन अपग्रेड करने का सोच रहे हो तो सुनो, फोन हो तो 5G वाला मिलेगा कैसे? बस जैज एक्सपीरियंस सेंटर या जैज ई स्टोर पर जाओ और नया 5G वाला फोन अपना बनाओ. यही नहीं, फुल पेमेंट पर पाओ साथ में फ्री डेटा बंडल्स, हैंडसेट इंश्योरेंस और बहुत कुछ. तो फिर फोन हो तो 5G वाला जैज 5G.
6: शौकत खानम, लाहौर और पेशावर के बाद आपकी एक और डोनेशन.
7: शौकत खानम, कराची की तकलीफ.
8: आज ही डोनेट करने के लिए 0800-11555 पर कॉल करें या हमारी वेबसाइट www.shaukatkhanam.org.pk विजिट करें.
5: स्टेप स्कूल से फाउंडेशन हो स्ट्रॉन्ग. स्टेप स्कूल्स दे रहा है मॉडर्न न्यू एज एजुकेशन which will prepare your child in becoming a future leader. Admissions open. For more details, call now at 0311-111-7837.
9: जहाँ पाँच दोस्त मिल जाएं, वही लाइफ है. और ऐसे ही स्पेशल पाँच के लिए जैज V5 शेयरिंग पैकेजेस. पाँच दोस्त, एक पैकेज और ढेर सारे डेटा, मिनट्स और SMS की शेयरिंग. अपनी पसंद की V5 ऑफर चूज करने के लिए डायल करो *400# या सब्सक्राइब करो सिमोस ऐप से. जैज 5G
10: होने जा रहा है पाकिस्तान इंटरनेशनल ऑटो शो 2026 18, 19 और 20 सितंबर को एक्सपो सेंटर लाहौर में. जरूर आइएगा.
11: कॉफी का मूड है तो डिस्काउंट भी होना चाहिए. अब इजी पैसा डेबिट कार्ड्स के साथ पे करें और पाए अप टू 30% ऑफ अपने फेवरेट कॉफी ब्रांड्स पे. टिम हॉर्टन्स, कॉफी मिस्ट्री, थर्ड कल्चर, सेकंड कप, ग्रीनो एंड मेनी मोर अक्रॉस पाकिस्तान. तो सिप करें, सेव करें और एंजॉय करें. इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक.
12: You're listening to The Breakfast Show with Shermaine.

0: perfect antidote to your road rage.
1: Your road rage.
2: City FM 89.
3: चिकन पॉक्स याद है, ये शिंगल्स बन के वापस आ सकता है, कभी सोचा भी नहीं था। तकरीबन हर शख्स के जिस्म में शिंगल्स वायरस छुपा होता है, तो शिंगल्स को अंडर एस्टिमेट ना करें।
4: फौरन अपने डॉक्टर से शिंगल्स के बारे में बात करें। खतरे में घिरे हर फर्द को जरूरी नहीं शिंगल्स हो। ये पब्लिक सर्विस मैसेज जीएसके पाकिस्तान की जानिब से है। मज़ीद मालूमात के लिए अपने डॉक्टर से रुजू करें।
5: You're listening to City FM 89.
6: Pakistan, for the first time, experience Ali Noor in an exclusive live concert series across Pakistan. From the timeless anthems that define a generation to the music that continues to inspire millions. The Surrender Tour is an intimate celebration of Ali Noor's extraordinary musical journey. Expect an unforgettable night featuring iconic classics, powerful storytelling, and an immersive live performance unlike any other. Happening on 27th September at the Arts Council Karachi. Get your tickets from Ticketwala. City FM 89 exclusive radio partners.
0: We are
2: City FM 89.
0: You're listening to
2: Non-Stop Hits.

0: move along to your song.
1: Only on City FM 89.
2: It's 5 p.m.
3: This time check is brought to you by Jazz.
4: City FM 89, we're playing your song.
3: This show is brought to you by Jazz.
1: City FM 89. Coming up next,
5: The Rush Hour with ABD.
6: City FM 89.
7: Trending today.
8: Football superstar Messi is officially taking his final bow for Argentina. He announced his retirement earlier in September and will step onto the pitch for his last match on October 6, 2026. His farewell match concludes a three-game international break that opens against Bolivia in Cordoba on September 30th.
9: City FM 89.
10: सब मुड़-मुड़ के देख रहे हैं।
11: Of course, it's the all-new Hyundai Palisade Hybrid. Grand, bold, and hard to miss.
10: बाहर से तो grand है, अंदर भी premium feel आ रही है, और space भी काफी है।
11: Exactly. Palisade Calligraphy is a true 7-seater with 3 usable rows, captain seats, and a dual-pane sunroof for a premium experience.
10: अच्छी है पर मुझे तो 8-seater चाहिए थी।
11: जी बेगम साहिबा, आपके लिए Palisade Smart order कर देता हूँ। इसमें 8 seats का option है।
10: यानी family के लिए भी perfect और no compromise on looks। अब समझ आया? सब क्यों देख रहे थे?
11: Experience the all new Hyundai Palisade Hybrid at your nearest Hyundai dealership. Premium has its shape.
12: कॉफी का मूड है? तो डिस्काउंट भी होना चाहिए। अब इजी पैसा डेबिट कार्ड्स के साथ पे करें और पाएं अप टू 30% ऑफ अपने फेवरेट कॉफी ब्रांड्स पे टिम हॉर्टन्स कॉफी मिस्ट्री थर्ड कल्चर सेकंड कप ग्रीनो एंड मेनी मोर अक्रॉस पाकिस्तान तो सिप करें सेव करें और एंजॉय करें इजी पैसा डिजिटल बैंक इजी वाला बैंक
13: खैर तो है इतनी जल्दी में कहां जा रही हो
14: गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना है आज अप्लाई करने का आखिरी दिन है और बैंक का टाइम भी खत्म होने वाला है
13: बैंक जाने की क्या जरूरत है इन्वेस्ट पार्क है ना
14: इन्वेस्ट पार्क
15: जी हाँ इन्वेस्ट पार्क से अब आप घर बैठे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करें ना बैंक का झंझट ना कतार ना इंतजार इन्वेस्ट पार्क वेब पोर्टल या मोबाइल ऐप पर जाएं और जब चाहे जहाँ चाहे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करें
14: इन्वेस्ट पार्क से इन्वेस्टमेंट आसान महफूज और मुनाफा
3: सिटी FM 89
1: ऑन द डायल
16: Hey guys, welcome to the Rush Hour. It is Thursday, which means tomorrow is the weekend. I hope you're having an absolutely amazing Thursday. It is the 17th of September today. If it is your birthday today, please WhatsApp in on 03142-898989 so I can wish you a very happy birthday. Enjoy the songs, guys.

0: This show is brought to you by Jazz
1: City FM 89.
2: Shaukat Khanum, Lahore aur Peshawar ke baad aapki ek aur donation.
3: Shaukat Khanum, Karachi ki takmeer.
4: Aaj hi donate karne ke liye 0800-11555 par call karein ya hamari website www.shaukatkhanum.org.pk visit karein.
5: Sab murmur ke dekh rahe hain.
6: Of course, it's the all new Hyundai Palisade Hybrid. Grand, bold and hard to miss.
7: Bahar se to grand hai, andar bhi premium feel aa rahi hai. Aur space bhi kaafi hai.
6: Exactly. Palisade Calligraphy is a true 7-seater with 3 usable rows, captain seats and a dual pane sunroof for a premium experience.
7: Achhi hai, par mujhe to 8-seater chahiye thi.
6: Ji begam sahiba, aapke liye Palisade Smart order kar deta hu. Isme 8 seats ka option hai.
7: Yani family ke liye bhi perfect aur no compromise on looks. Ab samajh aaya sab kyun dekh rahe the.
6: Experience the all new Hyundai Palisade Hybrid at your nearest Hyundai dealership. Premium has its shape.
8: Chicken pox yaad hai, ye shingles banke wapas aa sakta hai. कभी सोचा भी नहीं था. तकरीबन हर शख्स के जिस्म में शिंगल्स वायरस छुपा होता है, तो शिंगल्स को अंडर एस्टिमेट ना करें.
9: फौरन अपने डॉक्टर से शिंगल्स के बारे में बात करें. खतरे में घिरे हर फर्द को जरूरी नहीं शिंगल्स हो. ये पब्लिक सर्विस मैसेज जीएसके पाकिस्तान की जानिब से है. मजीद मालूमात के लिए अपने डॉक्टर से रुजू करें.
10: स्टेप स्कूल से फाउंडेशन हो स्ट्रॉन्ग. स्टेप स्कूल्स दे रहा है मॉडर्न न्यू एज एजुकेशन which will prepare your child in becoming a future leader. Admissions open. For more details, call now at 0311-111-7837.
11: The wait is finally over. Nishtab Kharia mein ho rahi hai second batch ki induction for EASA Part 147 B1 B2 training program.
12: Ab milegi aapko European Standard Training, wo bhi yahi Pakistan mein, in proud affiliation with Fly on Aero Italy, approved by Italian Civil Aviation Authority, ANAC.
13: अगर आपका ख्वाब है एयरक्राफ्ट के साथ काम करने का और बनना है इंटरनेशनल एविएशन एक्सपर्ट, then this is your moment to shine.
12: Real aircraft experience, world class training और global career experience. सब कुछ एक ही प्रोग्राम में.
13: Last date to apply is 4th October 2026. अभी अप्लाई करें at www.nivt.edu.pk और वो भी 100% free on scholarship.
14: At NestUp Training Division, we're not just building careers, we're shaping the future.
0: City FM 89.
1: We're playing your song.
15: You're listening to The Rock.

0: belong to your song.
1: Only on City FM 89.
2: This show is brought to you by Jazz.
3: City FM 89. खैर तो है, इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो?
4: गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना है, आज अप्लाई करने का आखिरी दिन है और बैंक का टाइम भी खत्म होने वाला है.
3: अभी बैंक जाने की क्या जरूरत है, इन्वेस्ट पार्क है ना.
4: इन्वेस्ट पार्क?
5: जी हाँ, इन्वेस्ट पार्क से अब आप घर बैठे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करें, ना बैंक का झंझट, ना कतार, ना इंतजार. इन्वेस्ट पार्क वेब पोर्टल या मोबाइल ऐप पर जाएं और जब चाहे जहाँ चाहे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करें.
4: इन्वेस्ट पार्क से इन्वेस्टमेंट आसान, महफूज और मुनाफा.
6: फोन अपग्रेड करने का सोच रहे हो तो सुनो, फोन हो तो 5G वाला. मिलेगा कैसे? बस जैज एक्सपीरियंस सेंटर या जैज ई स्टोर पर जाओ और नया 5G वाला फोन अपना बनाओ. यही नहीं, फुल पेमेंट पर पाओ साथ में फ्री डेटा बंडल्स, हैंडसेट इंश्योरेंस और बहुत कुछ. तो फिर फोन हो तो 5G वाला. जैज 5G.
7: सब मुड़ के देख रहे हैं.
8: ऑफ कोर्स, इट्स द ऑल न्यू Hyundai Palisade हाइब्रिड. Grand, bold and hard to miss.
9: बाहर से तो grand है, अंदर भी premium feel आ रही है और space भी काफी है.
8: Exactly. Palisade Calligraphy is a true 7-seater with 3 usable rows, captain seats and a dual pane sunroof for a premium experience.
9: अच्छी है पर मुझे तो 8-seater चाहिए थी.
8: जी बेगम साहिबा, आपके लिए Palisade Smart order कर देता हूँ, इसमें 8 seats का option है.
9: यानी फैमिली के लिए भी परफेक्ट और नो कॉम्प्रोमाइज ऑन लुक्स. अब समझ आया सब क्यों देख रहे थे.
8: एक्सपीरियंस द ऑल न्यू Hyundai Palisade हाइब्रिड एट योर नियरेस्ट Hyundai डीलरशिप. प्रीमियम हैज इट्स शेप.
10: स्टेप स्कूल से फाउंडेशन हो स्ट्रॉन्ग. स्टेप स्कूल्स दे रहा है मॉडर्न न्यू एज एजुकेशन विच विल प्रिपेयर योर चाइल्ड इन बिकमिंग अ फ्यूचर लीडर. एडमिशंस ओपन. फॉर मोर डिटेल्स कॉल नाउ एट 03111117837.
0: City FM 89. We're playing your song.
1: You're listening to
11: The Rush Hour with ABD.

0: antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: It's 6:30 p.m.
3: City FM 89.
4: This show is brought to you by Jazz.
5: City FM 89.
6: सब मुड़-मुड़ के देख रहे हैं.
7: Of course, it's the all-new Hyundai Palisade Hybrid. Grand, bold, and hard to miss.
6: बाहर से तो grand है, अंदर भी premium feel आ रही है. और space भी काफी है.
7: Exactly. Palisade Calligraphy is a true 7-seater with 3 usable rows, captain seats, and a dual-pane sunroof for a premium experience.
6: अच्छी है, पर मुझे तो 8-seater चाहिए थी.
7: जी बेगम साहिबा, आपके लिए Palisade Smart order कर देता हूँ. इसमें 8 seats का option है.
6: यानी family के लिए भी perfect और no compromise on looks. अब समझ आया, सब क्यों देख रहे थे.
7: Experience the all-new Hyundai Palisade Hybrid at your nearest Hyundai dealership. Premium has its shape.
8: शौकत खानम, लाहौर और पेशावर के बाद आपकी एक और डोनेशन.
9: शौकत खानम, कराची की तकदीर.
10: आज ही डोनेट करने के लिए 0800-11555 पर कॉल करें या हमारी वेबसाइट www.shaukatkhanam.org.pk विजिट करें.
11: जहाँ 5 दोस्त मिल जाएं, वहीं लाइफ है. और ऐसे ही स्पेशल 5 के लिए जैज V5 शेयरिंग पैकेजेस. 5 दोस्त, एक पैकेज और ढेर सारे डेटा, मिनट्स और SMS की शेयरिंग. अपनी पसंद की V5 ऑफर चूज करने के लिए डायल करो *400# या सब्सक्राइब करो सिमोस ऐप से. जैज 5G.
12: चिकन पॉक्स याद है, ये शिंगल्स बन के वापस आ सकता है. कभी सोचा भी नहीं था. तकरीबन हर शख्स के जिस्म में शिंगल्स वायरस छुपा होता है, तो शिंगल्स को अंडर एस्टिमेट ना करें.
13: फौरन अपने डॉक्टर से शिंगल्स के बारे में बात करें. खतरे में घिरे हर फर्द को जरूरी नहीं शिंगल्स हो. ये पब्लिक सर्विस मैसेज जीएस के पाकिस्तान की जानिब से है. मजीद मालूमात के लिए अपने डॉक्टर से रुजू करें.
14: कॉफी का मूड है तो डिस्काउंट भी होना चाहिए. अब इजी पैसा डेबिट कार्ड्स के साथ पे करें और पाएं अप टू 30% ऑफ अपने फेवरेट कॉफी ब्रांड्स पे. टिम हॉर्टन्स, कॉफी मिस्ट्री, थर्ड कल्चर, सेकंड कप, ग्रीनो एंड मेनी मोर अक्रॉस पाकिस्तान. तो सिप करें, सेव करें और एंजॉय करें. इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक.
1: You're listening to
15: The Rush Hour with ABD.
16: Welcome back to The Rush Hour. I'm your host, ABD, and we are going to a segment called How Long Should a Laptop Battery Last on a Single Charge? Now, I don't need to state the obvious, but I will. It's a laptop. It's supposed to sit on your lap. It's not something that's supposed to sit on a desk. Honestly, you can, and I use it mostly on my desk, but it's something that should be convenient and portable, right? Something we take home every day, take back to the office every day. It's something that we can move around. And it is most convenient when it is not plugged in. And when you don't want to keep it plugged in, you need to make sure the battery lasts. So you shouldn't need one of the best laptops on the market to see a decent battery duration. Honestly, most laptops can give you a good amount. And also generally, replacing batteries is an expensive process that can often require niche tools, especially for like Macs, you have niche screwdrivers for the niche heads. So that's a whole other process, right? You don't want to get into that. So just so that you know what you should be getting, so that you know, should I be replacing it or not? The general range for modern laptops will lie somewhere between 4 and 12 hours from a single charge. Now that's a big, big, big window, 4 and 12. So if you have a premium thin and ultrabook laptop, that's probably going to last around 8 to 12 hours, with some even usually reaching 15 under optimal conditions, which we do not have in Pakistan, unfortunately. But your more standard laptops will last about 6 to 10 hours or even 4 to 7 hours. And if it's budget friendly, then it's most likely on the 4 to 7 side. Now we will talk more about gaming laptops and use case and all of that, but I'm going to cut to a break first.

0: belong to your song.
1: Only on City FM 89.
2: This show is brought to you by Jazz.
3: You're listening to City FM 89.
4: जहाँ पांच दोस्त मिल जाएं, वहीं लाइफ है. और ऐसे ही स्पेशल पांच के लिए जैज V5 शेयरिंग पैकेजेस. पांच दोस्त, एक पैकेज और ढेर सारे डेटा, मिनट्स और SMS की शेयरिंग. अपनी पसंद की V5 ऑफर चूज करने के लिए डायल करो *400# या सब्सक्राइब करो सिमोस ऐप से. जैज 5G.
5: शौकत खानम, लाहौर और पेशावर के बाद आपकी एक और डोनेशन.
6: शौकत खानम, कराची की तकनीक.
7: आज ही डोनेट करने के लिए 0800-11555 पर कॉल करें या हमारी वेबसाइट www.shaukatkhanam.org.pk विजिट करें.
8: कॉफी का मूड है तो डिस्काउंट भी होना चाहिए. अब इजी पैसा डेबिट कार्ड्स के साथ पे करें और पाएं अप टू 30% ऑफ अपने फेवरेट कॉफी ब्रांड्स पे. टिम हॉर्टन्स, कॉफी मिस्ट्री, थर्ड कल्चर, सेकंड कप, ग्रीनो एंड मेनी मोर अक्रॉस पाकिस्तान. तो सिप करें, सेव करें और एंजॉय करें. इजी पैसा डिजिटल बैंक. इजी वाला बैंक.
3: सिटी एफएम 89. वी आर प्लेइंग योर सॉन्ग.
1: You're listening to The Rush Hour with ABD.
9: All right, guys, that is it for today's show. I hope you enjoyed. We are done with Thursday. Tomorrow is Friday. It is the weekend. We're going to have a great, great, great, great time. I hope you stay safe. Conserve your energy tonight. We are saving it for tomorrow. I will see you at 5 p.m. tomorrow, so make sure you stay tuned in. Take care.

0: antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: फोन अपग्रेड करने का सोच रहे हो तो सुनो, फोन हो तो 5G वाला मिलेगा कैसे? बस जैज एक्सपीरियंस सेंटर या जैज ई स्टोर पर जाओ और नया 5G वाला फोन अपना बनाओ। यही नहीं, फुल पेमेंट पर पाओ साथ में फ्री डेटा बंडल्स, हैंडसेट इंश्योरेंस और बहुत कुछ। तो फिर फोन हो तो 5G वाला जैज 5G।
0: Follow City FM 89 on YouTube to get your digital content fix. Podcasts, reviews, interviews and so much more. Non-stop content for you.
3: जहाँ पांच दोस्त मिल जाएं, वहीं लाइफ है। और ऐसे ही स्पेशल पांच के लिए जैज V5 शेयरिंग पैकेजेस। पांच दोस्त, एक पैकेज और ढेर सारे डेटा, मिनट्स और SMS की शेयरिंग। अपनी पसंद की V5 ऑफर चूज करने के लिए डायल करो *400# या सब्सक्राइब करो सिमोस ऐप से। जैज 5G।
1: City FM 89,
4: your drive along companion.
1: You're listening to
0: Future Sounds.
5: Future Sounds.

0: your song. Only on City FM 89. It's 8:30 p.m.
1: City FM 89.
2: जहाँ पांच दोस्त मिल जाएं, वही लाइफ है और ऐसे ही स्पेशल पांच के लिए जैज V5 शेयरिंग पैकेजेस पांच दोस्त एक पैकेज और ढेर सारे डेटा मिनट्स और SMS की शेयरिंग अपनी पसंद की V5 ऑफर चूज करने के लिए डायल करो *400# या सब्सक्राइब करो सिमोस ऐप से जैज 5G
3: City 89
4: You're listening to
5: Future Sounds.
6: Future Sounds.
7: Discover fire new tracks, fresh drops, and the artists you need on your playlist.

0: perfect antidote to your road rage.
1: Your road rage.
2: City FM 89.
3: फोन अपग्रेड करने का सोच रहे हो तो सुनो, फोन हो तो 5G वाला मिलेगा कैसे? बस जैज एक्सपीरियंस सेंटर या जैज ई स्टोर पर जाओ और नया 5G वाला फोन अपना बनाओ. यही नहीं, फुल पेमेंट पर पाओ साथ में फ्री डेटा बंडल्स, हैंडसेट इंश्योरेंस और बहुत कुछ. तो फिर फोन हो तो 5G वाला जैज 5G.
0: You're listening to
2: Future Sounds.
4: Future Sounds.
5: New tunes, hot beats. Where your next favorite track finds you.

0: perfect antidote to your road rage. City FM 89.
1: फोन अपग्रेड करने का सोच रहे हो तो सुनो, फोन हो तो 5G वाला मिलेगा कैसे? बस जैज एक्सपीरियंस सेंटर या जैज ई स्टोर पर जाओ और नया 5G वाला फोन अपना बनाओ। यही नहीं, फुल पेमेंट पर पाओ साथ में फ्री डेटा बंडल्स, हैंडसेट इंश्योरेंस और बहुत कुछ। तो फिर फोन हो तो 5G वाला जैज 5G।
2: City FM 89
3: On the dial.
4: You're listening to
5: Future Sounds.
6: Future Sounds.

0: antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: फोन अपग्रेड करने का सोच रहे हो तो सुनो, फोन हो तो 5G वाला मिलेगा कैसे? बस जैज एक्सपीरियंस सेंटर या जैज ई स्टोर पर जाओ और नया 5G वाला फोन अपना बनाओ। यही नहीं, फुल पेमेंट पर पाओ साथ में फ्री डेटा बंडल्स, हैंडसेट इंश्योरेंस और बहुत कुछ। तो फिर फोन हो तो 5G वाला जैज 5G।
3: Have you saved our WhatsApp number yet?
4: 031-42-898989.
3: Get in touch over WhatsApp.
5: जहाँ पांच दोस्त मिल जाएं, वही लाइफ है। और ऐसे ही स्पेशल पांच के लिए जैज V5 शेयरिंग पैकेजेस, पांच दोस्त एक पैकेज और ढेर सारे डेटा, मिनट्स और SMS की शेयरिंग। अपनी पसंद की V5 ऑफर चूज करने के लिए डायल करो *400# या सब्सक्राइब करो सिमोस ऐप से। जैज 5G।